0: ओहो अनि त कस्तो राम्रो भएछ है
1: आ फुर्के फुर्के फुर्के ओइ ओइ
2: ओरी आइसा
1: ओइ
2: ए साइन ए त
1: फुर्के त भयो ओ हो हो माछा

0: यानी तेरी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: I don't know.
0: देख अकेली लड़की अनजान शहर कुछ हो गया.
1: अच्छा देख बैठ एक ही है शेयर करना पड़ेगा.

विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम रणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजापाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गराउन हुन संपूर्ण भक्तजन में हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

0: सिद्धिनेश्वर मंदिर में दर्शन कर आने भक्त सन में हार्दिक अनुरोध
1: विभिन्न धर्मावलम्बी साझा आस्था को धरोहर विश्व विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

मनोरंजन साहित्य और कला, संस्कृति पर्यटन और विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।